खुद लड़के गला तेग पे धरना है तो आता सैर ज्यादा जुझार से किन्हीं को मजा है। एक सच दी खबर चमकौर की गड़ी विच सिंघां दा जत्था नाल लैके शहीदियां पाईयां। ये 40-50 सिंघां चों सात संगत सिर्फ 7-8 सिंघ रह गए, जिन्हां चों फिर पंजां ने यह हुक्म लाया कि सतगुरु तुसीं गड़ी चों तुसीं पंजां सिंघां दी मर्यादा बनाई है, तुसीं होवोगे तो कईआं नूं फिर अगां पंथ चला लो। ये ध्यान देना।

जिनी वारी करो दावे यतन करो यतन करो यतन करो अंदर तक रह जे रसना तो बाहर ना आ जाए फिर कंधा पै जाती कंधा जिन्हां नूं ढौंदे आ फिर कई बारी बड़ा बड़ा समा लग जाता गुरु प्यारे हो भाई पिराणा जी आख्या ओ प्यारिया ओ प्यारिया अज मेरी दिहाड़ी नहीं पई बैठ जा सत्संग कर ली इत्थे डाके मारना जिदे मूह विचो निकलदा है कि सत्संग हुंदा की है हुण वी किसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नूं पुछ लो ओह कहेगा संगत करनी वेलियां दा काम है मैं स्टेज तो कहना शिखर ते पहुंच जाओ पर जिंदगी सत्संग ना छड़े बाबा नंद सिंह की घट कमाई थी कभी घंटे का सवास खाली नहीं वेखो सत्संग नहीं छड़िया इन्ने बजे कीर्तन सुनना इन्ने बजे कथा सुननी जब बंदे का शीशा साफ हुंदा असली रस्ते उदो आंदा सत्संग सुनंदा असली उदो सवारी करदा शब्द ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ

योग में विषय संजो यत्न समझाए कोई समझाए अर्पण सदगी या सोपाए जन हटे यत्न सोपाया सदे ही अर्ण सुनाया तू अपने करता तेरा किया था।

प्रजा जने आप सुधारी शिव कम को शिव गम सुख दियो सतम को पल मोह भग दियो घर घर के अंतर की जान भले बुरे की सुशांति को तुम तेरे खुला अपर

0: सतगुरु डोर बैठे हैं। साई मियां मीर जी आए कहन लगे सतगुरु जे हुक्म करो ता जांगे बादशाह नो फल भुगता देवा। सतगुरु कहन लगे नहीं, उस अकाल पुरख का कहना जो मनना है, संगत का मनना है, अ उस अकाल पुरख के भाने बचा तेरा भाणा मीठा लागे। सतगुरु अडोर बैठे हैं। महाराज कह लगे साई मियां मीर नो असी धरनिया सन दो नियां, एक हरमंदर दे मैं धरा ओ तू धरे ये चाह सी मेरे अंदर दे ओ तुसी नीयां जेड़ी धरी है ये शहीदा दे नीयां जेड़ी शहीदी दे ये मैं धर रहे हैं। सुनो ढाडी जत्थे पासों
1: ओ साईं मियां मीर

जान दे ने महाराज सब नु जान दे इथे बैठिया नु वेख दे सेवा करदिया नु वेख दे नितनेम करदिया नु वेख दे भांडे मांजदिया नु वेख दे ने जोड़े झड़दिया नु वेख दे ने जो ठेके से जाना उदो कहना अखा बंद कर लेंगे ने उदो भी देख लेंगे महाराज नु पता है भी हुण सवेर वेले नीली बन्नी फिरदा है जां चिट्टी जां पीली रात नु ठेके ले जांदा है महाराज नु पता नहीं साडा साडियां करतूतां दा भी पता है गड गड के नहीं नहीं समझते नहीं जे समझते हो फिर ठेके से जाइए आप समझते नहीं।

कुमार शुरू की थी तेरे कवन कवन गुण कहते हैं। महाराज असीनी प्रसंग दे दास संघ जी एक जिन्ना रस ले लिया जाए उन्हें बहुत कोई अंत नहीं पा सकता। सो आनंद मानना एक जरनैल से कृपा करके मार ने जोड़ लिया आपां भी जोड़ लिया। जरूरी बेनती सब तो पहली जिन्ना चिर महाराज इतने ने उन्हें चिर उठ के लैना किसी ने नहीं जाना बेनती जरूर प्रवान करो भाई जिन्ना चिर महाराज इतने ने उन्हें चिर उठना नहीं सतगुरां ने तो इतें ही रहना है पर आप हुक्मनामे तो बाद सारिया नहीं जाना पहला नहीं जाना कल तो इतने दीवान लगने ने रात के कल रात का परसों रात का तो चौथ रात का तीन दीवान ने होर बाकी इको जगह थे अपने को बाहर जगह है साउंड वाले भी बेनती है कि बाहर वेड़े के बच्चे भी एक दो बच्चे ला दो जिन्हें अंदर संगत आनंद माणती है बाहरली संगत भी आनी आनंद माण जे होर संगत वध गई तो लंगर आए पास भी बह सकती संगत इतने रहा बहुत है तो यह हाल भी घट गूंजता इन्ना ज्यादा नहीं गूंजता बाकी अज रात का दीवान है जो कि गुरुद्वारा सिख संगत डनला ब्रिज अज रात का छेर तो लैके नौ बजे तक सात बजे जठा जाएगा सात बजे दान का समय सात तो नौ पक्का टाइम है सारी संगत ने आना।

राग सूही महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन राम नाम अराध्या गुर शब्द गुरु गुर के सब इच्छा मन तन पूरिया सब चूका डर जम के मेरे मन गुण गाव हो राम नाम हर के गुर तुटे मन पर बोधया हर पिया रस गट के रहा सत संगत उत्तम सत गुर केरी गुण गावे हर प्रभ की हर कृपा धार मेलो सत संगत हम तो वह पग जन के राम नाम सब है राम नामा रस गुरमत रस रस के हर अमृत हर जल पाया सब लाथी तिस तिस के हमरी जात पात गुर सतगुर हम वेचे ओ सिर गुर के जन नानक नाम परयो गुर चेला गुर राखो लाज जन के सूही महला चौथा हर हर नाम भजियो पुरखोत्तम सब बिन से दालद दलगा पहु जन्म मरना मेट्यो गुर शब्दी हर अस्तर सेव सुख समगा मेरे मन पज राम नाम अत पिरगा मैं मन तन अर्प धरियो गुर आगे सिर वेच लियो मुल महगा रहा नरपत राजे रंग रस मान है बिन नावे पकड़ खड़े सब कलगा धर्म राय सिर डंड लगाना फिर पछताने हाथ फलगा हर राख राख जन किरमत मारी सरनागत पुरख प्रत पलगा दर्शन संत देहो सुख पावे प्रभ लोच पूर जन तुमगा तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी मोह को कीजे दान हर निमगा जन नानक नाम मिले सुख पावे हम नाम विटहो सद घुमगा सूही महला चौथा हर नामा हर रंग है हर रंग मजीठे रंग गुर तुठे हर रंग चाड़िया फिर बहुड़ ना हुई भंग मेरे मन हर नाम नाम कर रंग गुर तुठे हर उपदेसिया।

हर प्रभ चेतना आयो मन दूजा भाव सहलंग हम मैल भरे दुहचारिया हर राखो अंगी अंग गुर अमृत सार नवला।

हर हर करह नित कपट कमावह, हृदय शुद्ध ना हुई अन दिन कर्म करह बहुतेरी, सुपने सुख ना हुई ज्ञानी गुर बिन भगत ना होई, कोरे रंग कदे ना चढ़े जे लोचे सब कोई रहाउ, जप तप संयम वर्त करे पूजा मनमुख रोग ना जाई, अंतर रोग महा अभमाना दूजे पाए खुआई, बाहर भेख बहुत चतुराई मनुआ दह दिस तावे, हों मैं व्यापिया शब्द ना चीने फिर जूनी आवे, नानक नदर करे सो।

गुण नाम दृढ़ाई हम हर प्रभ प्यारा ढूंढ टुंडाई सत संगत मिल हर रस पाई तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई गुरु नानक तुठा मेला हर पाई सूही महला चौथा हर कृपा करे मन हर रंग लाए गुरमुख हर हर नाम समाए हर रंग राता मन रंग माणी सदा आनंद रह दिन राती पूरे गुर कै शब्द समाणी रहाओ हर रंग को लोचै सब कोई गुरमुख रंग चलूला होई मनमुख मुग्ध नर कोरा होई जिसो लोचै रंग ना होवै कोई नदर करे ता सतगुर पावै नानक हर रस हर रंग समावै सूही महला चौथा जिहवा हर रस रही अगाई गुरमुख पीवै सहज समाई हर रस जन चाख हो जे भाई तौ कत अनत साध लुभाई रहाउ गुरमत रस राखो उरतार हर रस राते रंग मरार मनमुख हर रस चाखिया ना जाई हौमै करै बहुती मिलै सजाई नदर करे ता हर रस पावै नानक हर रस

हर हर त्याए मन मेरे मन त्याए हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाउ तुर भगत जना को बख्शिया हर अमृत भगत भंडारा मूर्ख होवै सो उनकी रीस करे तिस हलत पलत मोह कारा से भगत से सेवका जिन्ना हर नाम प्यारा तिनकी सेवा ते हर पाई है

जिसनो हर सो प्रसन्न हुए सो हर गुणा रवे सो भगत सो परवान तिसकी महिमा क्या वर्णी है जिसकै हृदय बसिया हर पुरख भगवान गोविंद गुण गाइए जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ सो सतगुरु सा सेवा सतगुर की सफल है जिस ते पाइए परम निदान जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध सरेम दे सो निफल सब अग

जो बिन प्रतीति कपटी कूड़ी कूड़ी अखी मीट दे उनका उत्तर जाएगा झूठ गमान जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराए तेहा हों करी बखियान सूही महला चौथा घर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निदाना तुमरी महिमा बन ना साको तू ठाकुर ऊच भगवाना मैं हर हर नाम धर सोई।

विच काष्ट अगन तरीजै बकरी सिंह इक तै थाए राखे मन हर जप भ्रम पौ दूर कीजै हर की वडियाई देखो संत हो हर निमाणिया मान दिवाए ज्यों धरती चरण तले ते ऊपर आवै त्यों नानक साध जना।

को हुए बिन नदरी नाही को पेख। तेरी बड़ियाई तू है जान है सब तुदनो नित त्याई। जिसनो तुद पावे तिसनो तू मिल है जन नानक सो थाई पाई। सूही महला चौथा जिनका अंतर वस्या मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाई। ते मुक्त पए जिन हर नाम त्याया तिन पवित परम पद पाई। मेरे राम हर जन अरोग पए।

पालत हुई। कहो नानक मेरी परम गत होई, सूही महला पंजवां कीता लोड़ है सो प्रभ होए, तुझ बिन दूजा नाही कोई। जो जन सेवे तिस पूर्ण काज, दास अपने की राखो लाज। तेरी शरण पूर्ण दयाला, तुझ बिन कवन करे प्रतपाला। रहाउ जल थल महियल रहया भरपूर, निकट वसै नाही प्रभ दूर। लोक पतियारै कछु ना पाइय, साच लगै ता हुमै जाइय। जिसनो लाए लए सो लागै, ज्ञान रतन अंतर तिस जागै। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम त्याए। दुए कर जोड़ करो अरदास, तुद भावै ता आणै रास। कर कृपा अपनी भगती लाई, जन नानक प्रभ सदा त्याए। सूही महला पंजवां, तन सुहागन जो प्रभु।

कूड़े मूर्ख की हाथी सारहाउ, देख दिखावे सच ना कमावे, कह तू महली निकट ना आवे, अतीत सदाए माया का माता, मन नहीं प्रीत कह मुख राता, कहो नानक प्रभ बिनो सुनीजै, कुचल कठोर कामी मुक्त कीजै, दर्शन देखे की वडियाई, तुम सुखदाते पुरख सुभाई, रहाउ दूजा सूही महला पंजवां, बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया, अवसर अपना बूझै ना आना, माया मोह रंग लपटाना रहाउ, लोभ लहर को बिगस फूल बै।

नीर बरोले खप खप मरता रहाउ। जिस पाहन को ठाकुर कहता वो पाहन ले उसको डुबता। गुनहगार लून हरामी पाहन नाव ना पार गिरामी। गुरमिल नानक ठाकुर जाता जल थल महियल पूर्ण बिधाता। सूही महला पंजवा लाल नरावे आ कमन गतीरी। सखी बताबो मुझे मतीरी सूहब सूहब सूहवी।

ततीरी जप तप संयम देऊ जतीरी एक निमख मलाव हो मोहे प्राण पतीरी मान तान अम्बुद हतीरी सा नानक सुहाग वतीरी सुई महला पंजवा तू जीवन तू प्राण।

गंगा उहां संत करह हर रंगा तह मरन ना जीवन सोग ना हरखा साच नाम की अमृत वरखा गोज कथा एह गुरते जानी नानक बोले हर हर बाणी सूही महला पंजवा जां कै दर्श पाप कोट उतारी भेत तसंग एहो भव जल तारी ओए साजन ओए मीत प्यारी जो हम कहो हर नाम चितारी रहाउ जां का शब्द सुनत सुख सारी जां की टहल जमदूत बदारी जां की तीरक इस मन है सधारी जां कै सिमरन मुख उजलारी प्रभ के सेवक प्रभ आप

0: बेटा आज मैं तनु भगत नामदेव जी की बानी सुनाना। मैं अंधले की ते तेरा नाम खुंदकारा।
1: खुंदकारा क्यों लगूंगे?
0: खुंदकारा लकड़ी दे उस टुकड़े नु कहंदे ने जिस उत्ते पटरा टिकाया जांदा।
1: पटरा क्यों हुंदा?
0: जिस उत्ते धोबी कपड़े धोंदे ने। भगत नामदेव जी दात दे खीमे सन ना, कपड़े धोंदे धोंदे अपनी आत्मा नु हरी नाम नाल धोंदे सन। इसे लिए उन्होंने किया है कि हे प्रभु मैनू तेरे नाम की ओनी टेक है जिन्नी के पटरे नु खुंदकारे दी।

अमल गुण मुल व्यापार मुल व्यापारी मुल भंडार मुल अभय मुल लड़ाई मुल पारी मुला सुनाए अमुल धर्म मुल दीवान मुल तुल मुल प्रवान मुल बख्शीस मुल निशान अमुल कर्म मुल परम।

जति सती संतोषी गावे वीर करारी गावन पंडित पढ़ रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पयाले गावन रतन पाए तेरे आटल तीरथ नाले गावे जोध महाबल सूरा गावे काणी चारी गावे खंड मंडल पर पंडा

नीत नीत मंत्रण कहत कब सर्व नाम कथ कवण कर्म नाम वर्ण तुसमातुंग प्रयात छंद नमास गंगा काले नमास गंगर पाले नमास गंगा रूपे नमास गंगा रूपे नमास गंगा पेखे नमास गंगा लेखे नमास गंगा काय नमास गंगा जाय नमास गंगा गंजे नमास गंगा पंजे नमास गंगा रामे नमास गंगा ठामे नमास

नक्षत्र मित्र परया पवित्र पृथ्वी सारी सारी सागरी सह भगवती संत प्रसाद सके आश देश है क्या बिज पेशता है क्या गंज करना है क्या पंज भरना है क्या बिज लोका क्या रित सोता है क्या दूत भरना है क्या भूत करना है कि राज प्रवाह धर्म सुझाए कि अशोक वर्ण है कि सर्व वर्ण है कि जगत कृतिय कि सदरंग सुधरी है कि ब्राह्मण स्वरूप है कि अनुपान रूप है कि आदो देव है कि आप देव है के चित्रंग महिमा के कर ही मैं के रोजी जाकर ही मैं

मंडल है, मैं मंडल है, जगदीश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्वोपारण है, चित के धरण है, जग के करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वं पर है, सर्वं कर है।

करुणा करें। अजप अजप अजप अजप है अमृत अमृत अमृत अमृत है, अमृत अमृत है करुणाकृत है, अकृत अकृत करुणी कृत है, अमृतेश्वर है परमेश्वर है, अकृत अकृत अमृत अमृत है, अजब अकृत है अमृत अमृत है, निर्नायक है फलकायक है, विश्वंपर है करुणालय है, निरपनायक है सर्वपायक है, बहुपंजन है अर्गंजन है, रिपतापन है जप जापन है, अकलंकृत है सर्वाकृत है।

सदा शब्द सुहावा शब्द सुहावा सदा सुहिला सद गुरु सुनाया यही तिन का मन बसया जन तरों लेख आया एक फिर एक मेरे कर

माता के उदर में व्रत बाल करे सुख मनोसारी है मन कब सारी है बुढ़दाता जगर में आहार पहुंचावे। उसनो कहे कोह न सके जिसनों अपनी लग लावे अपनी लग आते लाई गुरमुख सदा संभाली है।

से मन आई हर आप मन कहे भक्त न के नानक जिनर पल पाई हर रस पाए पल पिए हर रस पौन

जगमय आए कह जा तुझ कर्म कमाया के कर्म कमाया तुझ शरीरा जा तू जगमय आया जिन हर तेरा रचन रचया सू हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखया पाया चाहे नानक शरीर प्रवान होगा जिन सतगुर स्यो चित लाया हे नेत्रो मेरे और तुम मैं जो तरी हर बिना वरना देखो कोई हर बिना वरना देखो कोई नरी हर

0: दिल्ली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह वी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3872.

ताको की जय सद नमस्कार जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्ब सुख ताहू मन बूठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्ब थोक नानक तिन पाया अगनत साहो अपनी देरास खात पीत बरते अनंद उलास अपनी अमान कछ बाहर साहुले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस्त तिस आगे राख प्रभ की आज्ञा मन मथ है उसते चौगुण करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिरख की छाया स्यों रंग लावे ओ बिनसे ओ मन पछतावे जो दिसे सो चलनहार लपट रहे होते हैं अंध अंधार बटाऊ स्यों जो लावे ने ताको हाथ न आवे के हे मन हर के नाम के प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया मिथ्या होमे ममता माया मिथ्या राज जोवन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती असव बस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्ब कौ हिर है मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अंसवाद मिथ्या चरण पर विकार कौ ताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सब पे सफल देह नानक हर हर नाम ले बिरथी साकत की आरजा साच बिना कह होवत सूचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवत ताकै दुर्गंध

ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊचते ऊचा, मन अपना है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन भये, नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी तीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारो माहा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाईऐ, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोज है महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मनमा है, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाक्षर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की

ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का तनी। श्लोक उतारे जो अंतर नाम, सर्ब में पेख है भगवान। निमख निमख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओ अपरस सगल निस्तार है। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। परत्रय रूप न पेख है नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। कर्ण न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आप सौ मंदा। गुरप्रसाद बिखिया पर हरै, मन की वासना मन ते टरै। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मधे को ऐसा अपरस। वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्ण की माया ते हुए पिन। कर्म करत हो वै नि कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बांछै, केवल भगत कीर्तन संग राचै। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवरह नाम जपावै, नानक ओह वैष्णो परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग। मन ते बिनसै सगला परम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तन अर्पै विष्ण प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत का उपावै। सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नाम आत्म है शुद्ध है। राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोन न आवै। वेद पुराण सिमरत बूझै मूल, सूखम मह जान है स्थूल। कहो वरना कहो दे उपदेश, नानक उस पंडित कहो सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, कहो वरना मह जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गत होए, साध संग पावै जन कोए। कर कृपा अंतर उतारै, पस प्रेत मुग्ध पाथर कौ तारै। सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जुगत कित न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म। जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास। आत्म राम तिस नदरी आया, दास संतन पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सो दास दर्ग है प्रमाण। अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सुझ ही परै। सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सोऊ कहावै। तैसा हर्ख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेख खाटी।

नानक रचना प्रभ रचे बहुविद अनेक प्रकार अष्टपदे कई कोट होए पूजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमह उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नानक करते का अंत न पाव है कई कोट पय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट किरपन कठोर कई कोट अपिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्भ कौहिर है कई कोट पर दुख ना कर है कई

जब लग जाने मुझसे कछ होए तब इसको सुख ना ही कोए। जब ए जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लगने चलना ही चीत। जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हों छूटे। सहस खटे लख को उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनक भोग बिख्या के करे नह तृप्तावे खप खप मरे। बिना संतोख नहीं को राजा सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै। नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसै प्राप्त होए।

प्रभ सोए जो किस कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हूँ कै संग बूझे देखा कर विवेक आप है एक आप है अनेक मर न बिनसै आव न जाए नानक सद ही रहया समाए आप उपदेसै समझै आप आपे रचया सब कै साथ आप कीनो अपन विस्तार सब कछ उसका ओह करना हार उससे भिन्न कहो किस होए थान तनंतर कै सोए अपने चलते आप करना हार कौत कर रंग अपार मन में आप मन अपने माह नानक कीमत कह न जाए सत सत

गुण कहे एक न जानौ। आठ पहर प्रभ सह हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे। मन मेरे तिनकी ओट ले मन तने अपना तिन जन दे। जिन जने अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता। तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर्श सब पाप मिटावे।

मन मानै सो सेवक परमेश्वर की गत जानै सो सतगुरु जिस हृदय हर नाउ अनक बार गुर कौ बल जाउ सर्व निधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग

जब अकार एहो कछ न दृष्टेता, पाप पुन तब कहते होता। जब धारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संकमात। जब इसका वर्ण

तनी तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक है हर आगमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए तब शिव सख्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तरै तब कवन निडर कवन कत डरै अपन चलते आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अभिना

होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपने आप ही अचरजा, नानक अपन रूप आप ही उपरजा।

सेवक को सेवा बने आई, हुक्म बूझ परम पद पाई, इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार, बंधन तोर पे निर्वैर, अंदिन पूज है गुर के पैर, हे लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आप है मिले, साध संग मिल करो आनंद, गुण गावो प्रभ परमानंद, राम नाम तत करो विचार, दुर्लभ देह का करो उदार, अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुहाओ, आठ पहर प्रभ देखो नेरा, मिटाया ज्ञान बिनसै अंधेरा।

कछ करा आप पला करतूत आत्मी की आपे जान है अपने जी की आप साच तारी सब साच ओत पोत अपन संगराच ताकि गातमित कहीं न जाए दूसर होए ता सोझ ही पाए।

आस अनित त्यागो त्रंग, संत जना की तूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करो, साध संग आगन सागर तरहो, हर तन के पर लेहो पंडार, नानक गुरपुरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग पज परमान।

एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का एह आधार, उत्तम सलोक साध के बचन, अमलीक लाल एह रतन, सुनत कमावत।

जे मार्ग के जे मार्ग के बने जाए न तुषा अपना मां संतुषा जे पहले मां अंग द्वारा

हर्तनाम जन की बुढ़ियाई हर्ते नाम जन तो बाबाई हर्ता नाम जन तो खोल जोग हर नाम जब कठन योग जब राता हर नाम की सेवा नाम पूजे हर हर देवा हर हर जन के वास दीना हर संग जन तो आप दीना हर हर जन के ओत पसाई हर पुरता जन तो न जानी ओत वो जन हर असराते सुन समाज नाम रत्नाते आठ पैर जन हर हर जपे हर का पर्व पर्वत नहीं सपे

ये प्रसाद की रेखी कर दिला सुखदायी कम स्वास्थ्य मिला ये प्रसाद को फिर सब रखा

तब हर्षो को कछ व्यापत। जब अपन आप आपा ब्रह्म तब वो कह कसोत परम। अपन के लिया वरतीजा नानक करने हर न दूजा। जब होत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किसको गनी। जब एक अगम पार तब नरक सुर को कौन अवतार। जब निर्गुण का सह सुभाई तब शिव सत कहो के तखाए। जब आपे आप अपनी ज्योत रहे तब कम डर कमन सत्य करे। आपन जल तब करने हार नानक ठाकर गम पार। अवनाशी सो के अपने आसन चाहे जन्म मरण तो कह अवनासन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की सहो के सोए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गोचर के स्कूल चलेखा। जब नाथन रंजन गोचर गाते तब कौन सिके कौन बंधन।

होता। जय निरंजन रंग का निर्वाण, जय कौन को मान कौन उमान, जय स्वरूप केवल जगदीश, जय चल चल लग कौ पीस, जय जो स्वरूपी जो संत समावय, जय किसे को कम प्रवतावय, कर्म क्रामन करने हार, नानक करते का नाय सुमार, जब अपनी शोभा अपन संग मनाई, तब कमन माए बा मित्र सुत पाई।

जय अचल अचेत अदेश माया वहाँ किसे व्याप्त माया आप तो पे आदेश यह गुणता नाही प्रवेश जय एक भगवंता कौन अत्यंत किस लगे।

कौ नर को सुरत वंशावत आल जाल माया जंजाल हमें मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की उपख्यान आपन के लाव कर देखे खेल संकोच तो नाम के कह जय अवगत पग कह आप जय पसरे पसार सं

गुण गोविंद रसियो चित चित वहो नारायण एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल मोदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का ए आधार उत्तम श्लोक साध के बचना अमोलिक लाल ए रतना।

प्राप्ति स्थित करो संत मीत सावधान एकादर चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सोतन दान सर्व चाता की पूर्ण होए प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए सब से उच पाए स्थान बोर न होवे आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व कै सिद्ध विद्या तव जोग प्राप्त ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रदास सबके मध सब के उदास सुंदर चतुर तत्ता देता समदर्शी एक दृष्टि।

निर्मल सोभाय अमृत साकी बानी, एक ना मन माय समानी, दुख रोग बिन से पै परमा, साध नाम निर्मल।

0: of God, what is it you do for me?
1: परम सम्मान जो गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ गुरफतेह प्रवान करो जी गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। हफ्तावारी समागम दे विच आपां सारे हाजरियां भर रहे हाँ। अज दे समागम दे विच धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी का शहीदी दिहाड़ा पूरी दुनिया के बड़ी श्रद्धा भावना के नाल मनाया जा रहा है ते नाल ही सत्कारयोग भाई बलजीत सिंह जी बजाज परिवार वालों अपने माता पिता जी की मिठी याद में गुरु के लंगरां की सेवा की जा रही है। गुरद्वारा साहब वैस्टर्न सिंह सभा विलियम लेक की समूह गुरद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी वालों पिछले हफ्ते तो बहुत सोहना उपराला किया गया है कि बच्चों दी गुरमत क्लासा शुरू की गई दो दिन शनिवार ते ऐतवार। पिछले शनिवार बच्चों ने शनिवार की क्लास में आके ऐतवार स्टेज पर अपनी हाजिरी भरी सी। कल बच्चे क्लास में आए थे तो अज भी उन्होंने हाजिरी भर ली। साड़ी कोशिश रहेगी हर हफ्ते दो दिन बच्चे गुरद्वारा साहब क्लास में आया करेंगे तो हर हफ्ते बच्चों की कोई ना कोई एक्टिविटी संगत के नाल सांझी की जाए ताकि बच्चों का हौसला बढ़े। सो अज धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे जीवन दे विचों कुछ क विचारां बच्चों ने सांझियां करनियां। आप जी नूं बेनती है बड़े एकाग्र चित होकर बच्चों तो गुरु अर्जन देव जी दीआं वडियाईआं सुणनियां। सो आओ बच्चों तो आपां गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी का जीवन सरवण करिए जी। प्रेम सहित गज के फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

महाराज ने उपदेश दिता भाई हरि परमात्मा का नाम हर रोज अपने हिरदे विच ध्याउणा है ते ध्या के अपने संगी साथियों नूं तार लेंगा, आप भी तर जाएगा ते आप साथियों नूं भी तार लेंगा। साथी कड़े कड़े ने अखां कन्न नक ज्ञान इंद्रिय ये भी तर जाएंगे। धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र शहादत नूं कोटान कोट प्रणाम। गुरु जी के बचन अपने हिरदे विच वसाइए। भुल्लां दी खिमा आनंद साहब का पाठ करके अरदास बेनती भी शामिल।

परम सत्कारयोग गुरु रूप खालसा जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इंटरनेशनल पंथक ढाडी जथा ज्ञानी अवतार सिंह आलम, पिंड कोटला बड़ला, जिला फतेहगढ़ साहिब वाले ते नाल सेवा निभा रहे हैं। साथी भाई दर्शन सिंह दर्शी, दर्शन सिंह दलगीर, लखविंदर सिंह लवली, छत बखरे बखरे विषयां दी सीढ़ी लेके हाजिर हाँ। आस करते हैं आप संगतां नूं जरूर पसंद आवेगी। सब तो पहला नमस्कार उस अजूनी सहभंग परमात्मा नूं, जेड़ा कुल कायनात दा मालक है, जेड़ा पत्थरां विच भी जीवा जंतुआं नूं रिजक पहुंचा रिहा है। चंद सूरज तारे पौन पानी जिसके हुक्म विच सेवावां कर रहे हैं, जिसके हुक्म तो बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। सो आए इंसान ओ परमात्मा दा सब तो वड्डा धन्नवाद अते गुण गाण तू कर, जिसने तेनू 84 लाख जूना दा मालक बनाया, रिजक दिता, धंधे लाया, ते पल पल तेरी प्रित पालना कर रहा है। जियो वाए पिंड जिम साजिया, दिता पैनण खान।

अपने दास की आप बैज राखी नानक सद कुरबान। ओ सृष्टि दे रचनहार मालक नू अज तरह तरह दे पेखा नाल लभण दा यतन कीता जा रिहा है, पर बाणी कहंदी आ ना तू आवे बस बहुत चढ़ावणे, ना तू आवे बस वेद पढ़ावणे। उस ना बस आउण वाले परमात्मा नू अवतार सिंह आलम दे साथी नमस्कारा है।

परमात्मा की साजी हुई इस दुनिया विच कुछ एक वस्तुआं ऐसियां हन जो एक बार मिलदियां ने बार बार नहीं, उन्हां चो एक हन मापे। रब तां किसे ने तकिया नहीं, पर जे तकना होवे तां मापिया चो जरूर तकिया जा सकदा है। किन्ने वड्डे भागां वाले ने ओह लोक जिन्हां दे सिर ते मापिया दा छाया मौजूद है। चौथे पातशाह ने माता पिता ना करन वाले झगड़े नूं पाप कहा है। साहे पूत झगड़त हो संग बाप, जिन के जने बडीरे तुम हो तिन सिउ झगड़त बाप। आओ कमाइए चौथे पातशाह दे वचना नूं, मापिया दा करिए सत्कार जिन्हां ने सुखा सुख सुख के सानू परमात्मा तो हासिल कीता। मां ने 9 महीने गर्भ च रखिया, खैर मंगी, जन्म दिता, आप गिल्ली था ते सानू सुखी था पाया। अपनी छातियों अमृतमयी दुध पिलाया, लिखाया पढ़ाया, सूझ बूझ दिती ते होर बहुत कुछ। ऐसे महान माता पिता दा देन कई चुक नहीं दिता जा सकता, पर रब समझ के उन्हां मापिया नूं सत्कार जरूर दिता जा सकता है।

मेरे निरंकारी सतगुरु गुरु नानक देव जी ने सब तो पहला औरत दे पक्ष विच सो क्यों मंदा आखिया जित जम्मै रा जान कह के हां पक्षी नाला मारिया। जमाने नु समझाया के सब रिश्ते नाते जगत जहान औरत नाले आ। पावन बाणी दे होर कई शब्दां विच औरत नु सील बंती बत्ती गुण सलखणी सब परिवारे माए श्रेष्ठ कह के सत्कार दिता। पर अफसोस जमाने ने इना पावन बचना नु समझिया नहीं, जिस कारण अज मनुखता दी जन्मदाती नु खुद जन्म लैण विच जमाने अते मापिया दे तरले लैणे पै रहे ने। किसे ने ठीक किया है कुख चो धी धरत चो पानी दोनों मुक गए खत्म कहानी। ओ नाले जे धीया मार दे जाओगे तां नूहा कित्थों लियाओगे। आओ त्यागिए इस भैड़ी सोच नू, परमात्मा दी दात नू ठुकरा के पापां दे भागी ना बनिए। सरकार दे सख्त कानून ते प्रचारकां दे प्रचार सदका भावे इस कदलो गार्द नू ठल पैगी, पर कुख च पल रही बच्ची अज भी डरी ते सहमी होई है। जो अपनी मां नू कह रही है मां देखी कि मैनू जन्म लैण तो पहला ही ना वापस कर दे। मी अगो अज दी पढ़ी लिखी मां कहदी है धीए घबरा ना, हुण मैं ओह मां नहीं रहेगी जेड़ी तेनू कुख विच मार देंगी। मैं जमाने नाल लड़के तेनू जन्म देंगी। शायर दा तसव्वुर है धी की कह रही है मां की कह रही है ते उस बाणता नू मेरे साथी है।

मेरे गुरां ने भुखिया साधुआं नूं 20 रुपइयां दा लंगर छका दिता। ऐसी लंगर दी बखरी रीत तोरी, बच्चे बच्चे नूं सेवा विच ला दिता। मेरे महान सतगुरां ने लंगर दी ऐसी प्रथा तोरी, अज दुनिया दे किसे भी कोने चले जाओ गुरु का लंगर जरूर मिलेगा। पूरे साल विच जिन्ने भी गुरपुरब, शहीदी पुरब, होला महला, पौधा पंद्रवाड़ा या होर खास दिन आते हैं, उन्हां दिनां दे गुरु के लंगर जरूर लगाए जाते ने। ऐसे ही बस नहीं, जदों कदे कुदरती आफत, भूचाल, तूफान या सुनामी लहरां आके नुकसान कर जान, उदों भी गुरु के लंगरां दे 100-100 ट्रक भर के भेजे जाते ने। जिथे इन्हां महान लंगरां विच हर घर वल्लों खुल के हिस्सा पाया जाता है, उत्थे वीरां, बजुर्गां, बच्चियां, धीआं, भैणां वल्लों शरदा नाल सेवा भी की जाती है। गुरु के लंगरां विच सेवा करन करके महान माता माता खीवी जी का नाम पावन बाणी विच दर्ज है। पलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली, लंगर दौलत बंडिया रस अमृत खीर की आली। बारे बारे जाइए गुरु नानक दे महाराज दे सिखां दे, जेड़े पातशाह दे दसे मार्ग ते चलदियां अज हर इक राह रस्ते ते तरह तरह के भोजन बना के निम्रता सहित बेनतियां कर करके संगतां नूं लंगर छका रहे हन। महान लंगरां नूं समर्पित दो लाइनां ढाडी जथे कोलों हे, इंज सुणो।

खालसा जी गल कर लगे आ भैन ते भरा दे टुट प्यार दी। दुनिया ते इको एक अजिही भैन जिसने अपने भरा चो रब चकिया होवे, कौन नहीं जानदा उस सत्कार योग भैन बेबे नानकी नू। जदों गुरु नानक देव जी पहली उदासी सुल्तानपुर तो तुरन लगे सी, उदों भैन ने पुछया सी वीरा वापस कदों आवेगा, तां पातशाह ने कहा सी भैने ए तां नहीं पता कदों आवांगा, पर जदों तू कदे दिलों याद करेगी उदों जरूर आ जावांगा। समा बनिया, एक दिन बेबे नानकी भैन चुल्हे ते प्रशादा पानी पका रही है, एक रोटी फुल के जब रोटी दी तरह गोल हो गई, उस रोटी बल्ले वेख के भैन ने कहा के काश मेरा वीर नानक किते मेरे पास हुंदा, आ फुलिया फुलका ओ छकदा। वीर नू याद करदिया भैन दा दिल बैराग नाल भर गया, मन भरा दिया यादा विच गुआच गया, जिस अखियां च सोने भरा दी तस्वीर ओ बगन लग पईआं। उधर भैन दे दिल दी आवाज पातशाह पास पहुंची, बैठी बैठी भैन वीर नू किवें किवें याद करदी ए, ते किवें वीर आके दरवाजा खड़काउंदा ए। उन्हां यादा भरे पलां दी तस्वीर दर्शन सिंह दर्शी दर्शन सिंह दलगीर दी जोड़ी है इंच खिंच रही है।

0: अंत विच बहुत बहुत धन्नवाद SMC कंपनी दा जिन्हां दे जतना सदका सीढ़ी मार्केट दे विच समर्पित कीती गई है। ते विशेष धन्नवाद सत्कारयोग साडे पिता यानी महेंद्र सिंह जी जशीला अते सरदार प्रीतम सिंह जी रामगढ़ वालियां दा। अंत विच अनेका भुल्ला चुक्कां दी माफी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: केबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call
4: 250-392-3874. Stay for 7 days more. I know you're very hungry. I know you're starving. If you stay for 7 days more, you'll get everything. You'll get the rule of the world. But those Gurmukh Pyare couldn't withstand the hunger anymore. So they asked to leave. Satguru Gobind Sahib Ji Maharaj, with almost 800 men at that time, saints at that time, including Mata Sahib Kaur Ji and Mata Sundar Kaur Ji, the mahals of Guru Gobind Singh Ji Maharaj, Bate Sahib Jade Baba Ajit Singh Ji, Sahib Jade Baba Jujar Singh Ji, Sahib Jade Baba Jorawar Singh Ji, Sahib Jade Baba Fateh Singh Ji.